0: के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।
1: गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है।

0: celebrating your favorite occasion. East FM.
1: Kenya's premier
0: Asian mix.
1: Asian mix.
2: हीर की खातिर मर गया राजा छोड़ के तख्त हजारा
3: सो व्हाट
2: और हीर तो फिर दी शॉपिंग कर दी
3: बिग डील ड्यूड
2: हीर तो फिर दी शॉपिंग कर दी दिन भर सेक्टर सतारा भाई दिन भर सेक्टर सतारा
3: ओ मैन
4: मैनू नी चाहिदा कोई राजा
3: चल झूठी
4: नारा छे दी यारी धीरे मैनू ते चढ़िया चा फैशन दा
3: हाय चुकला रब्बा मैनू
4: मैनू ते चढ़िया चा फैशन